0: Leica Gold. The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11, 11.
1: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties.
4: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तूने जान।
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
7: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड।

0: ताली तक धीमी तक ताली तक धीमी तक धाला आम तक धुग तक ताली के नेत्र तक नक तक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झुम तक नक नक झम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी दामु तारी के ने ताक झुम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को गुदारी दामु तारी के ने झम तारी जग तारी ताक नक नक ता झुम ता झुम ता झुम ता झम तारी जग तारी जाने जाने को ता झुम ता झुम ता झुम ता ताक धंग धुम कर धंग धुम ताक धंग धुम
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंग

0: काटूंगा वही इलाकों रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11.
4: Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place.
4: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
3: Danu 11, 11. Danu Properties.
6: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
7: Four beers, please, garçon!
6: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
8: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। Laika Radio और Laika Gold आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
9: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Like a Gold। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
1: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
1: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
1: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
4: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कछ

0: बाप्पा मोरिया। चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
1: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
0: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
0: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे। और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से रोक सकते। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
4: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
5: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: लाइका गोल्ड
1: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब world.com
3: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line 0730099823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823
4: द वेट इज फाइनली ओवर
5: अब सही सुर लगा रहे मुमताज
4: मिर्जापुर इज कमिंग To the big screen.
6: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से.
4: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल.
7: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर.
4: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ
6: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी दूसरा कोई नहीं खुलेगा
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: One performer,
10: countless personalities,
9: a whole universe of entertainment.
10: Sunil Grover, live UK tour 2026.
9: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
10: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
9: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
9: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
11: Big Boss में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हंस तू मेरी जान
9: Big Boss Season 20 every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar and for the first time watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar
12: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: Angels Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit travelhubworld.com.
4: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
5: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
6: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai bolo.
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Maharaja Tours के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस, सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956 154 846.
8: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
9: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
8: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
9: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
8: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
9: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
8: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
9: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
11: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
12: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
13: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true-life adventure.
14: I left behind everything I knew.
13: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
14: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
13: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
16: गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल.
1: Time for Listener of the Week.
17: Listener of the Week.
18: Hi, my name is Chandani and I am the Listener of the Week on The Breakfast Show. I love listening into the Leica Network all the way from Yorkshire because it takes me back in time. Listen to my playlist from Monday to Friday only on The Breakfast Show with Gajal on Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: है Leica Gold। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 or 24-hour line.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज,
3: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज। बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस, द मालदीव्स, सेशेल्स एंड श्रीलंका।
4: चूज फ्रॉम लग्जरी बीच एस्केप्स, फैमिली रिसॉर्ट्स एंड इनक्रेडिबल मल्टी सेंटर हॉलीडेज, ऑल एट एक्सक्लूसिव प्राइसेस।
3: कॉल स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज टुडे ऑन 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
3: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
10: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: The wait is finally over.
13: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
12: Mirzapur is coming to the big screen.
14: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat.
12: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
15: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
12: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
16: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
17: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
18: Up next, Ravi Sharma with the Ravi Sharma Show on Leica Gold.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. London, get ready for an unforgettable night.
1: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
0: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
1: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
0: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
1: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
0: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
2: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग
3: डेजर्ट सफारी
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
4: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे'ल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 that's 8574 8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड

0: जैसे
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जिंदगी वहाँ सेट को
3: sonatours.co.uk स्पेशल ऑफर हॉलिडे ऑफ अ लाइफटाइम विद अमेजिंग डिस्काउंट 14 डेज कैनेडियन रॉकीज एंड अलास्का क्रूज इन 2027 बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट 400 ऑफ ऑल लूज द डिस्काउंट कॉल सोनाटर्स नाउ ऑन 0208-951-0111
4: द साइकिल ऑफ लव From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
5: I left behind everything I knew.
4: The story of a man from Delhi who cycled six...
6: Aayi na jag se laaj, main itna zor se naachi aaj.
7: Aapka naya station, Laika Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: पहले लता जी की आवाज में और उसके बाद रफी साहब की आवाज में आपने सुना गीत फिल्म साजन से। ये पुरानी साजन भाई, शायद मनोज कुमार वाली।
1: साजन साजन पुकारूं,
0: अब पुकारना बंद कीजिए क्योंकि भाई इस समाचारों का समय नजदीक है। अगेन भाई, पहले तो धन्यवाद दे काजल को, आज तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रुक गई मेरे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत सभी श्रोताओं का। दिस इज रवि शर्मा अंटिल 1 o'clock this afternoon with मनोरंजन प्रोग्राम।

लाइका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। ट्रंप ने अमेरिका में कनाडाई बॉम्बरियर विमान की बिक्री रोकने की धमकी दी है, हवाई जहाज की बिक्री रोकने की धमकी दी है। सत्य निकेतन हादसा जो दिल्ली में हुआ, वो जो बिल्डिंग गिरी, उसके मालिक को पत्नी और बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा जा रहा है। इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फटने से 3,000 फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं, 3.5 लाख लोग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। और दिल्ली की अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। और वही हाईकोर्ट का आदेश एक महिला को जबरदस्ती बांग्लादेश भेजने के वही कारण उसे वापस लाने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। असम सरकार उसे 2 लाख रुपए भी देगी और उसे वापस ला करके असम में बसाएगी। विस्तार से खबरें। ईरान की अमेरिका को नई वार्निंग, कह रहे हैं कि हमने अपनी सैन्य रणनीति बदल ली, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी बदल ली है। ईरान ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि उसने अपनी फौजी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। यह दावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने किया है। मोहसिन रजाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हाल के दिनों में ईरान की नई मिसाइलों से वाशिंगटन को साफ चेतावनी मिल गई है। आर्थिक युद्ध यानी माली युद्ध जो फाइनेंशियल जो वार है, उसका जवाब फारस की खाड़ी में समुद्री रास्तों को रोक कर और नाकाबंदी करके दिया जाएगा। हाई कोर्ट का आदेश, मुस्लिम महिला को जबरन बांग्लादेश भेजने के मामले में असम सरकार अब 2 लाख रुपए हर्जाना देगी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने असम सरकार को भारत से बांग्लादेश में एक बंगाली बोलने वाली बंगाली भाषी मुस्लिम महिला को पुशबैक के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये पहली बार है जब किसी राज्य सरकार को भारत से बांग्लादेश में किसी व्यक्ति को भेजने में निर्वासन नियमों का उल्लंघन करने के लिए अदालती खर्च या मुआवजा देने के लिए कहा गया है। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग भारत आएंगे या नहीं, चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है, पोजीशन क्लियर नहीं है। चीन ने मंगलवार को शी जिनपिंग के यानी आज दिन शी जिनपिंग के सम्मेलन में हिस्सा लेने की संभावना पर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि वाले मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इससे जुड़े मामले में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की याचिका यानी एप्लीकेशन खारिज कर दी है। पिछड़ी सोच वाले पुरुषों को धर्म का ठेकेदार मत बनने दीजिए, एफिल टावर मामले में अभिजीत दीपके ने एक ही बयान दिया है। फ्रांस के प्रसिद्ध एफिल टावर में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS से जुड़े करीब 100 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बाद वहां तैनात महिला कर्मचारियों को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें भाई, इस संस्था के जो सन्यासी होते हैं वो महिलाओं का सामना नहीं करते, महिलाओं से हटके रहते हैं, तो ऐसा वहीं ये सिचुएशन खड़ी हो गई है। इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि पिछड़ी सोच वाले पुरुषों को धर्म का ठेकेदार मत बनने दीजिए। जो पुरुष धर्म और आस्था का इस्तेमाल महिलाओं पर पाबंदी लगाने, नैतिकता थोपने और दूसरों की आज़ादी छीनने के लिए करते हैं, वे धर्म और देश दोनों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दावा किया है कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की ओर से सऊदी अरब पर किए गए हमलों में कम 73 लोग जख्मी हुए हैं। यमन के सबसे अधिक आबादी वाले इलाके और देश के उत्तरी भाग के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल रखने वाले हूती विद्रोहियों ने जुलाई में सऊदी अरब के खिलाफ 9 सैनिक नाकाबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद उसने सऊदी अरब पर अपने हमले शुरू कर दिए थे। उसने रेड सी में समुद्री जहाजों को भी निशाना बनाया था।

0: मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन डरपोक जज कहलाना पसंद नहीं करूंगा। ये सेंटेंस, ये टिप्पणी मुजफ्फरनगर के अपार जिला एवं सेशन जज रवि कुमार दिवाकर ने उस फैसले में की है जिसमें उन्होंने 8 साल पुराने एक जघन्य हत्या मामले में दोषी को सजाए मौत सुनाई है। जज रवि कुमार दिवाकर ने शाहपुर शाहजादी हत्याकांड में उनके पति को फांसी की सजा सुनाते हुए अपने फैसले में ये बात लिखी। जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने फैसले में एक गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के माफिया और गैंगस्टर उनसे संपर्क करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उनका फैसला जो है वो अडग रहेगा। धीरेंद्र शास्त्री के बारे में पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ का एक बयान आया है। आप जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा के नाम से लोकप्रिय धीरेंद्र कृष्ण गर्ग उर्फ धीरेंद्र शास्त्री की ओर से दुर्गा पूजा के मौके पर नॉनवेज न खाने की अपील के बाद पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि वो संत आदमी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। संत आदमी के बारे में ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, उनकी कथा पूरे देश में मशहूर है। लाखों की तादाद में लोग हावड़ा ब्रिज पर उन्हें सुनने गए थे। कोई भी व्यक्ति शाकाहार का समर्थन कर सकता है, इससे वो अपराध ही नहीं हो जाता। हालांकि अगर कोई किसी को पाखंडी जैसे शब्द से एड्रेस करेगा तो हम इसका समर्थन नहीं करते। पाकिस्तान सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक पेट्रोल की कीमतें वहां प्रति लीटर 12.90 रुपए हो गई हैं। इसमें 3.72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं। ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में तेल की सप्लाई में दिक्कतें आई हैं। पाकिस्तान का अधिकतर तेल हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए आता है लेकिन इस रास्ते पर आजकल आवाजाही बंद होने से मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बहुत बढ़ गई है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से 3,000 के करीब फ्लाइट्स मुतासिर हुई हैं। हवाई अड्डों का संचालन दूसरे दिन भी बंद रहने से 3,40,000 से भी ज्यादा मुसाफिर फंसे हुए हैं। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की हवाई कंपनी बॉमरडियर को चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिका में अपने हवाई जहाज बेचना चाहती है तो उसे इन्हें अमेरिका में ही बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कल सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कोई और बिक्री अमीन हवाई जहाज़ों की नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हमारा बाजार चाहिए तो उन्हें प्रोडक्शन का काम यहीं करना होगा। अमेरिका को पैसों की तिजोरी समझना बंद करना होगा। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Leica Gold. Leica Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: साउथहॉल ट्रैवल वालों की भाई वो बात फिर से हम दोहराना चाहते हैं, आपको याद दिलाना चाहते हैं कि दुबई डील्स के लिए बड़े जाने माने हैं साउथहॉल ट्रैवल्स और वो कहते हैं कि कांटेक्ट कीजिए हमसे। हमारा फ़ोन नंबर है 0208574 8410। साउथहॉल ट्रैवल दुबई के लिए होली डील्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं एंड दे आर एट ऑल प्रोटेक्टेड, डोंट फॉरगेट दैट।
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आशा भोसले और सहेलियों की आवाजों में आपने सुना शिकार फिल्म का गीत। और क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी कितनी है, डालेंगे नजर जरा स्कोर के आंकड़ों पर। भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, महिलाओं का क्या स्थिति है, और इसके अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भी तो तीसरा टेस्ट शुरू होने वाला है, कल शुरू होगा।
1: ये है Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And before you send, let me tell you the rates. भाई एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं भारतीय करेंसी में 128.29 रुपीस, पाकिस्तानी 375.49, बांग्लादेशी टकाज 166.25, श्रीलंकन रुपए 444.03, अफगान अफगानी 88.49 और केनियन शिलिंग्स 175.1.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Well, the gold is trading at the rate of 104.7 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूँ। लेकिन इस समय जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं, ये समय है चिंतन का, तो पेश करता हूँ थॉट फॉर द डे, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें भिजवाया है सुधीर शर्मा ने। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ई लिंक से भेजा आपने और आप बता रहे हैं कि आप आर्य समाज लंदन के रेजिडेंट प्रीस्ट हैं, स्वागत है भाई। ये बता दें आपको कि आजकल जो चिंतन आप सुन रहे हैं दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्य समाज लंदन, और वो एक सूचना भी साथ दे रहे हैं कि विश्व में, दुनिया में शांति और सद्भाव की ज्योति जगाने के लिए आर्य समाज लंदन आपको विश्व शांति महायज्ञ में आमंत्रित करते हैं। यानी दुनिया भर में अमन चैन की स्थापना के लिए, युद्धों को रुकवाने के लिए, प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए वो एक अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें भाई वो आपको आमंत्रित करते हैं, कहते हैं आइए वैदिक प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और एकता के इस विशेष अवसर पर परिवार और मित्रों सहित तशरीफ लाइए। कब हो रहा है ये, कहाँ हो रहा है तो नोट कीजिए, रविवार यानी संडे 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ये अनुष्ठान चलेगा। आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, W13 0LY, ये है भाई उनका एड्रेस, फिर बता दूं, आर्य समाज लंदन, 69 आर्गाइल रोड, लंदन W13 में ये आयोजन किया जा रहा है। अब लौट आइए आज के चिंतन की ओर। सुधीर जी लिखते हैं कि एक व्यक्ति आचार्य के पास गया और कहने लगा, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं अध्यात्म की दुनिया में उतरना चाहता हूं, मैं मोह माया से छुटकारा चाहता हूं, विषय विकारों से दूर हटकर उस परम पिता परमात्मा की साधना में लीन रहना चाहता हूं। आचार्य ने कहा कि पहले मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी, क्या तुम सचमुच अधिकारी हो ज्ञान के? ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको विचारक बनना होता है। जो व्यक्ति विचार करे किसी भी काम से पहले, घर छोड़कर आने और भाई मेरा शिष्य बन जाने से कल्याण नहीं होगा। अगर आप विचार करना शुरू करें, वाणी कहती है कि ना सुख है विच गृहस्थ दे ते ना कुछ शड गया, सुख है विच विचार दे संता शरण गया। आप विचार करें हर बात पर, भाई उसी का नाम तो चिंतन है, चिंतन करें। जो आप कर रहे हैं क्या वो समाज के लिए कल्याणकारी है, विश्व के लिए कल्याणकारी है और अपने आप खुद आपके लिए मंगलमय है? शिष्य ने कहा, महाराज मैं तैयार हूं, आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं ज्ञान का अधिकारी हूं। अच्छा ये बात है, तो आचार्य ने कहा, ये लो, ये एक मायावी कबूतर है मेरे पास, इसे संभालो और किसी ऐसे एकांत स्थान पर ले जाके इसकी गर्दन मरोड़ दो, मार डालो इसे, मैं जिंदा कर लूंगा लेकिन मेक श्योर किसी को पता ना लगे, कोई ना देखे, ये ध्यान रखना, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें शिष्य बना लूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा। शिष्य ने कहा, ठीक है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कबूतर लेके चला तो पंख फड़फड़ाता कबूतर अब उसके हाथों में था, इधर उधर दूर नजदीक कहीं जाकर भाई, कभी घने जंगल की ओर गया तो कभी समंदर किनारे जहां कोई ना देखे, ऊपर से कोई वो दूसरा परिंदा भी ना देखे। फिर वो एक गुफा में गया, आसपास कोई नहीं था। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, यहां तो कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। उसने कबूतर की गर्दन को पकड़ा, मरोड़ने वाला था तो एकदम रुक गया, विचार किया जो मैं करने जा रहा हूं, गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, कोई ना देखे, पर ये कबूतर उसकी ओर देख रहा था, गुटर गुटर आंखें तरेर कर घुमाकर, ये तो गड़बड़ हो जाती। गुरुजी ने कहा था
कोई ना देखे, किसी को पता ना लगे। उसने क्या किया, कबूतर की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि वो ना देखे, और फिर जब वो गर्दन मरोड़ने लगा तो फिर विचार हुआ, चिंतन किया। गुरुजी ने कहा था कोई ना देखे, कबूतर की आंखों पर तो मैंने पट्टी बांधी, पर मैं खुद तो देख रहा हूं, अपने आप से भागकर कहां जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं। पर गुरुजी ने कहा था किसी को पता ना लगे, कबूतर को पता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अपने आप से भागकर कहां जाओगे बहनों भाइयों, अपना अच्छा बुरा, अपना सत्कर्म या दुष्कर्म आप अपने से छुपाकर कैसे कर सकते हो, आपको पता होता है। आपके भीतर जो परमात्मा निवास करता है, आपके माध्यम से वो देख रहा है, जान रहा है, और इतना ही नहीं वो आपको रोकता भी है। अंदर से आवाज आती है जिसको आप अपनी आत्मा की आवाज कह सकते हैं। हर बुरा काम करने से वो आवाज आपको रोकती है, पर आप उसे अनसुना करके फिर अपराध करते हैं। शिष्य ने विचार किया, चिंतन किया और मान लिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई ना देखे, कोई ना जाने, किसी को पता ना चले। भाई मुझे तो पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मैं इसे कर रहा हूं। कबूतर को वापस लेके आचार्य के पास गया। महाराज, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां अपने किए कर्मों को मैं इतना छुपा लूं कि किसी को पता ना चले। मुझे पता है, कोई ना देखे, मैं देख रहा हूं। आचार्य ने कहा, मैं नहीं, आपके भीतर जो परमात्मा है वो देख रहा है। आंखें देखती हैं दुनिया की चीजें, पर आंखों के देखने को भी कोई देखता है। जब आप कहते हैं ना, मुझे आंखों से कम दिखाई दे रहा है, ये किसने देखा? जब आप कहते हैं मेरी आंख दुख रही है, ये किसने देखा? बहनों भाइयों, जिसे आप मन कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, वो सब जानता है, और वो उस परम पिता परमात्मा का अंश है हम सबके भीतर। वो ईश्वर सब देखता है, सब जानता है। उससे छुपाकर आप कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। झांकिए और उससे अनुमति लीजिए। एक एक कर्म का हिसाब किताब देख रहा है वो, लिख रहा है वो, जानता है वो।

0: कोई कर्म आप अपने आप से छुपा नहीं सकते क्योंकि आप कर रहे हैं, और ये देखने वाली शक्ति जो है वही परमात्मा की शक्ति है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें सुधीर शर्मा जी ने भिजवाया ईलिंग से, और बहन भाइयों चिंतन जो है वो स्पॉन्सर है आर्य समाज ईलिंग की ओर से। याद दिला रहे हैं कि 13 तारीख को उनके यहाँ विश्व शांति के लिए यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और आप सबको वो आमंत्रित कर रहे हैं। विश्व में शांति की स्थापना के लिए इस यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। एड्रेस मैं बता दूं, और तारीख 13 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, आर्य समाज लंदन 69 आर्गाइल रोड W13LY में ये आयोजन होगा। बुकिंग के लिए आप उनका फोन नंबर मिला सकते हैं 02089911732। संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 02089911732। याद दिला दें आपको कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के कंपेटिटिव रेट्स नोट कीजिए भाई। एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग 127.9 रुपीस, एंड दैट्स द मैक्सिमम। 127.90 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: गणपति बाप्पा के आगमन से
2: On this week's Like Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
3: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे देने से कोई रोक सकता बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है
2: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Let's return to the biggest hits, back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: TravelHub.
4: At all protected.
2: Like.
6: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.
7: सुनिए
8: कहिए कहिए
7: सुनिए सुनिए
8: कहिए कहिए ना

0: और मेलोडी। और भाई ये जो धुन है यार, ये वो बीन वाला लहरा लगता है कि सांपों से जोड़ दिया गया है इसे, जबकि सब जानते हैं कि सांप के कान नहीं होते। फिर वो संगीत का मजा कैसे लेता है? हवा की तरंगें जो हिलती है ना भाई, किसी भी स्वर से, ध्वनि से आवाज जब निकलती है तो आवाज से वायुमंडल में जो तरंगें पैदा होती उनसे वो उनको पढ़ लेता है सांप। उसे चक्षु श्रुवा भी कहते हैं, संस्कृत में इसका मतलब है आंखों से सुनने वाला। वो आंखों से ही, उसका मुंह उधर हो और आप उसके पीछे से गुजरेंगे तो वो एकदम जो है अपनी मुंडी पलटेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, क्योंकि उसने देख लिया है उसके पीछे कोई है। हवाओं की तरंगों को पढ़ करके बहुत बारीक दृष्टि है उसकी, जो कानों का काम मिली उसी से भाई वो चलाता है सांप। राइट, अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत फिल्म निगाहें से था, और इससे पहले जो गीत आपने सुना दैट वाज बातों बातों में फिल्म से लिया गया था। तो भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाते हैं हम, चिंतन के बाद आपने सुना, एंजॉय किया। इसी बीच बहुत सारे संदेश आ गए हमारे स्क्रीन पर, और ये है चिंतन के विषय में। उल्लास टोरंटो से, जैस्मीन यहाँ से, जगदीश जी बुशी से, भरत गंगाराम जी, थैंक यू वेरी मच भाई, आप सब चिंतन के प्रशंसक हैं। और राधा गर्ग रेडिंग से, सुनीता शर्मा जी, सारा पटेल जी, नमस्कार, वाओ वेरी गुड चिंतन शर्मा जी, थैंक यू जी। सारा जी, पता लगा है कि वीकेंड पे आपका जन्मदिन था, तो वीकेंड पे भी छुट्टी नहीं करते क्या आप? वीकेंड पे भी पैदा हो जाते हैं, अब वीकडेज में पैदा होते तो हम आपको बधाई देते, अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहेंगे हम आपको, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। लेकिन आज भाई जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी हैं। देखिए, भूपेन हजारिका, बड़ा प्रतिष्ठित नाम है संगीत में, और संगीत में तो आशा जी का नाम भी बहुत ऊंचा है, उनका भी जन्मदिन पड़ता है आज, आशा भोसले का। गिरिराज सिंह पॉलिटिशियन हैं, ये भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और क्रिकेट में शुभमन गिल, 1999 में जन्मे थे फाजिलका में, शुभमन, तो भाई वो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। संत रामपाल, ये नाम हरियाणा का है, सतलोक करोथा से, बड़े कंट्रोवर्शियल संत रहे हैं वो, चर्चा में रहते हैं, और उनका भी आज जन्मदिन है। और भाई आज पुण्यतिथि यानी बरसी है शेख अब्दुल्ला की, 1982 में उनका इंतकाल हुआ था। और फिरोज गांधी, राहुल गांधी के दादा, श्रीमती इंदिरा गांधी के जो हैं शोहर, उनके पतिदेव, उनका निधन हुआ था 1960 में आज ही के दिन, यानी 8 सितंबर को। लेकिन साहब 8 सितंबर को अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह या कोई और उत्सव है तो हमारी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a Extra podcast update.
3: भाई लाइका एक्स्ट्रा का जो पॉडकास्ट है, नया हमारा जो एपिसोड है 32, वो अब उपलब्ध है, उसे देखिए। और संगीत में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप एंजॉय करेंगे। और भाई आप ये रेडियो सुन रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो संगीत में दिलचस्पी तो है ही है आपकी। तो मैं याद दिला दूं आपको कि भाई मैंने एक बहुत ही सुरीले गायक कलाकार को इंटरव्यू किया और वो इस एपिसोड में है। नाम है उनका मोहम्मद वकील, बड़े दिलचस्प इंसान हैं और साहब उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, तजुर्बा है, अनुभव है, स्वर है और ज्ञान है स्वर का। लेजेंडरी आर्टिस्ट जगजीत सिंह और जावेद अख्तर जैसे कलाकारों के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो भाई ज़रूर देखिएगा हमारा ये एपिसोड 32 विद मोहम्मद वकील एंड रवि शर्मा। इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
8: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
13: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
12: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
13: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
12: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
13: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
12: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
13: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
14: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु गुरु,
16: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
15: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
16: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
14: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र।
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
17: टू बुक कॉल 0208-514-54 Download, book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
19: Discover Malta and Gozo with a twin-center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
20: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208 951 0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB digital radio पर. Alexa पे बोलो play Leica Gold और online सुनो leicagold.com पे.
21: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के

0: सॉन्ग, और भाई जिसको पसंद है इसे अपने नाम कर ले। बात यह है कि एक आवाज तो इसमें आशा जी की थी, दूसरी आवाज किसकी थी? ना लता जी की नहीं भाई, तीनों बहनों जो मतलब गाती रही हैं। वैसे तो मीना मंगेशकर भी थोड़ा बहुत गुनगुनाती रही पर वो इतना रोशनी में नहीं आई। तीसरी बहन इनकी एक जो गाने वाली है, लता जी, आशा जी और उषा जी। तो भाई इसमें आशा जी और उषा जी की आवाज़ें शामिल थी और ये गीत बहुत सारे श्रोताओं को पसंद आ गया। सुनी रे सजरिया साजन बिन तेरे, क्या अनुप्राश अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। भाई इसी बीच कुछ संदेश आकर के चिपक गए हमारे स्क्रीन पर और खुश आपका मैसेज मिल गया है। किशोर पांड्या साहब आनंद पान वाले सुन रहे हैं, सराह रहे हैं और भाई हम जो भी गीत पसंद आए वो आपके लिए सुनवा रहे हैं, ले लीजिएगा। नैना शाह, आपका नाम है पर पैगाम नहीं है, आपने मिटा दिया है ये सोच के कि नाम तो लेते नहीं है मेरा। अरे आपका नाम तो हम प्रोग्राम के बाद भी लेते हैं। नैना जी, आप जो सुझाव देते हैं, जो गीत सुझाते हैं, हमें याद रहते हैं। और महेंद्र बजारिया साहब साउथ हैरो में आपका संदेश मिल गया, थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन बहुत पसंद आया। और ग्रेट लता जी की आवाज़ में एक गीत सुनना चाहा आपने, नहीं सुन लिया है, धन्यवाद भेज रहे हैं, थैंक यू। विजय सटन में हमारे साथ जुड़े हैं, हंसा वोरा जी। कीर्ति, थैंक यू वेरी मच, कहती है आपकी शिष्या, ओह गॉड ब्लेस यू। और ये हरीश रोडा साहब, थैंक यू, आपको ये गीत पसंद आया, ये आप ही के लिए था। सुखी, सुखी ने लिखा है, मेरे नाम एक गाना ठोक दो। ठीक है जी, ठोक देते हैं, कहते कोई भी एक गाना मेरे नाम ठोक दो, थैंक यू। और हमारे पवन नेहरा साहब, ये हरियाणवी हैं और इन्होंने लिखा है कि मौसम के हिसाब से एक कप चाय और एक मट्ठी जैसा कोई गाना हो जाए, गर्मा गर्म चाय और मट्ठी जैसा गाना, बिल भेज दूंगा फिर मैं चाय का, गाना सुनवा के। थैंक यू चोरी साहब, सुनते रहिएगा। और कौन है भाई ये, ज्योति और गिरीश साहब, आपका संदेश मिल गया है। और हमारे ये हैं कौन, वीरेंद्र चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन पसंद आया, चिंतन के साथ गाना आपको अच्छा लगा। अर्जन जी, फतेह पटेल, रंजन और स्लो वाली रानी, पम्मी स्लो वाले, निर्मला जी, हिना जी, रागनी जी, सारे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके बता रहे हैं कि भाई पैसे भारत भिजवाना चाहे तो रेट अच्छा चल रहा है। आज का रेट है 127.9 फॉर वन पाउंड, 127.90 रुपये। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11. Danube Properties. Danube 11.
9: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
10: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
9: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
10: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
11: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
10: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
13: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
12: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: Sonatours.co.uk special offer 14 days to Japan and South Korea for cherry blossoms in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off or lose the discount after. Call Sonatours now on 0208 951 0111.

0: लागा।
1: आध्यात्मिक गीत है भाई, स्पिरिचुअल शब्दावली है, चुनरी में दाग लग गया है, छुपाऊं कैसे, बाबुल के घर जाऊं कैसे। अब ये रिदम एंजॉय कीजिए।

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tana dir tana. बड़े सॉन्ग भाई, हरि को स्वामी के नाम करते हैं हम यह गीत, क्योंकि वो इसे बहुत गुनगुनाते हैं और बिल्कुल मन्ना डे साहब के अंदाज में, बिल्कुल टीटो कॉपी जो है उसकी गाते हैं वो। हरि, ये गीत आपके नाम गया। और अब अगला गीत देखते हैं कौन अपने नाम करता है। आ रहा है आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की, और सुनवा रहे हैं आपको ये
1: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: गाना नहीं है, दिल का नजराना है। स्वीकार कीजिए।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और साहब अब एक सूचना आप तक पहुंचा दें कि भाई द 20th सीजन ऑफ बिग बॉस इज़ बैक होस्टेड बाय सलमान खान. द शो एयर्स एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर टीवी एंड जियो हॉटस्टार. And for the first time, Jio Hotstar is streaming every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. वहाँ से घर से रिपोर्ट. तो भाई ये सूचना आप तक पहुँचानी थी और एक और सूचना आगे चल के देते हैं आपको.
3: ये है Like a Gold.
4: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: पेरिस में नए मंदिर की ओपनिंग हो गई है भाई. BAPS का मंदिर शानदार बनकर तैयार और वहाँ पर लोगों की वो कतार दर्शन करने के लिए और वहाँ पर वो एक भारतीय संस्कृति का एक उत्सव चल रहा है. 6 तारीख को मंदिर की ओपनिंग हुई है और तब से लेकर साहब हर किसी का जी चाहता है. बहुत से लोग पहुँचे हैं दुनिया भर के कोने कोने से वहाँ इस मंदिर की ओपनिंग के अवसर पर. मन के अंदर दर्शन कर लो.

0: अब लोग पेरिस की यात्रा पर जाएंगे तो भाई सिर्फ एफिल टावर देखने नहीं, अब वहां पर एक और भारतीय संस्कृति का जागृत जीवंत भवन जो है वो मंदिर बनकर तैयार हो गया है, दर्शन करने जरूर विजिट करेंगे। मुझे ले चल मंदिर, कहते हैं मंदिर भी जाना तभी संभव होता है जब ऊपर वाले का इशारा होता है।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel याद दिला रहे हैं भाई, they are known for दुबई deals. अगर आप दुबई की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए उनसे। Contact Southall Travel today on 0208574 8410. Southall Travel, they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट travelhubworld.com।
3: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
4: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
3: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
4: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
5: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
4: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क।
6: The wait is finally over.
7: Ah, अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
6: Power, revenge और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
9: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
6: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
8: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: Have you noticed the way fans shout at football matches?
14: Oh, wake up!
13: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
15: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft. London, are you ready? Raga Event presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Radio Network. Proud proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
16: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: छोड़े जावा शोले शोले शोले शोले मेरी जवानी बोले बोले बोले
1: रब्बा मैं की करा
0: जाने नहीं
1: कभी कोई घर का काम भी कर लिया करें की करा। एक लड़की को शिकायत करती है कि मेरा जो है वो नहीं चल रहा है कंप्यूटर, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा है, बताइए क्या करूं मैं। कहता है कुछ घर का ही काम कर लो, हर वक्त फ़ोन पे लगे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है।

ना ये जिद है ना कोई इसरार है, आपसे एक इल्तजा सरकार है। जहां जिगर सब हो मुबारक आपको, आपका बस दिल हमें दरकार है। मिलेगा संभाल के रखेंगे ना दो।

0: Rebecca Gould. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
3: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220-plus destinations with 4G and 5G where available.
3: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
3: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
5: नमस्कार मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઇંગ સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન જેમાં ફ્લાઇટ્સ એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો મહારાજા ટૂર્સ તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે
6: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ
7: अपना बनाया तेनु
6: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 पाउंड्स वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216 टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फट
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
11: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
12: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
11: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
12: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
15: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
14: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
15: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे
16: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
4: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
17: Manoranjan with Ravi Sharma. सीट और बहनों भाइयों, अब कार्यक्रम के समापन का समय हो गया। बाली भाई तैयार हैं और शर्मा जी का बोरिया बिस्तर भी तैयार है। हमारी अगली मुलाकात कल होगी 10 बजे की खबरों के बाद। मगर आप कहाँ चले? रुको,
18: कोई सौगात मेरी सुनती जाना बात कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख कुड़िए, जाते जाते ओ जरा जाते।

0: जाते जाते ओ जरा जाते जाते
1: और जाते जाते याद दिला दूं, बाली भाई तैयार है भाई, आज आशा भोसले जी का जन्मदिन है, बहुत कुछ सामग्री जुटा के लाए हैं, बातें करेंगे उनके विषय में। हमारी आपकी मुलाकात कल 10 बजे की खबरों के बाद, तब तक के लिए हैव अ सुपर्ब डे।

0: what can you say? The most versatile singer, if not in Bollywood, in the world, Asha Bhosle. You know, she performed an astonishing spectrum encompassing thousands of songs, spanning over 20 languages, countless music genres and emotional moods. इन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किए. ऑफ कोर्स 12,000 गाने गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने डिक्लेयर किया इनके गाने. एंड व्हाइल द हिस्टोरियंस डू नॉट पिन डाउन अ सिंगल ऑफिशियल न्यूमेरिकल काउंट फॉर एवरी डिस्टिंक्ट मूड, हर करियर इज यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड फॉर अ वर्चुअली limitless, I would say, range rather than a fixed deposit. Fixed deposit? Now digital ka zamana hai. To digital zamane mein, you can say ke ek virtual limitless range inhune dikhai. Koi fixed digital era nahi tha us zamane mein. मैं समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं. क्लासिकल, इनके जॉनर्स देखो, पोर्ट्रेट, क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल, गजल्स एंड ठुमरीज, कैबरे, जैज, रॉक, पॉप, साइकेडेलिक, इमोशंस, दम्मारो दम जैसा पॉप एंड साइकेडेलिक एंड डिवोशनल एंड फोक. फिर इमोशनल मूड्स में देखो, प्लेफुल मूड, सोलफुल, मेलेंकोलिक, मेलेंकोलिक यानी कि हार्ट ब्रेकिंग और डीपली यर्निंग बैलेड्स, रोमांटिक, यूफोरिक. गिनेस बुक ने जब 12,000 गाने इनके डिक्लेयर किए, शी सिमेंटेड हर स्टेटस एज अ सिंगर हु गेव वॉइस टू एवरी शेड ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड म्यूजिकल स्टाइल in Indian cinema history. I mean, Asha Bhosle ji ki gaane hum celebrate karte hain. Legendary Asha Bhosle, the versatility and timeless career across generations. Unmatched versatility. You know, unki iconic discography hum dekhein, toh it transitioned seamlessly from high octane club bangers to deep sorrowful ghazals, chart busters, cabaret, jazz and dance. मैंने सारे गाने इनके स्टडी किए, फिर मैंने सोचा कि इन्होंने हर हीरोइन के लिए, हर हीरोइन तो नहीं, जितनी भी हीरोइंस के लिए इन्होंने गाए वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट. वरना गाने तो सेम 12 महीने सुनाई देते हैं आपको. सो, मैंने पहले तनुजा से शुरू किया, फिर सायरा बानू, आई मिलन की बेला, उसके बाद आएगी हेलन, उसके बाद साधना, फिर मधुबाला, ऑल द 3 M's, मधुबाला, माला सिन्हा एंड मीना कुमारी. सेकेंड आवर में हम करेंगे काजोल, उर्मिला मटोंडकर, जीनत अमान, रेखा, जया बच्चन, जया भादुरी कहूँ तो उस जमाने में, ये सब हीरोइंस, परवीन बाबी होंगी, आशा पारेख होंगी, करिश्मा कपूर भी होंगी, शशिकला भी होगी. सो लेट्स एंजॉय आशा भोसले जी. अगर मैं ये बोलने के लिए मैं 10 मिनट बिता दूं कि शी वॉज बॉर्न ऑन 8th of September 1933 इन सांगली एंड शी पास्ड अवे सैडली आई वुड से दिस ईयर इन अप्रैल. लेकिन ये सब बातें करने से बेटर है कि मंगेशकर फैमिली में हाउ मेनी सिस्टर्स एंड फादर, मदर, ये सब तो आपको मालूम है. So let's enjoy her songs. 93rd बर्थ एनिवर्सरी। यस, आज कितने बड़े पैमाने से शी वुड हैव बीन सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज वर्किंग विद हर, आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज ऑफ इन लंदन, आई हैव गॉट फॉन्ड मेमोरीज इन मुंबई विद आशा जी। बट आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, क्योंकि एक गाना चला जाएगा अगर मैं मेरे एक्सपीरियंसेस की बात करूं। सो लेट्स गेट ऑन विद आशा जी, हु सैंग फॉर ऑल द हीरोइंस।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 127.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
9: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
10: Lights on, shutters up, staff ready.
9: But today's customers don't start on the high street.
10: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
9: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
10: They walk into your competitors.
9: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
10: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
12: Well, she's talking about Jaimin Food potato chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: Sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get $400 or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
14: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
15: Four beers, please, garçon!
14: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
16: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour our line.
17: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
18: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
17: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
18: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
19: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
18: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
20: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
21: Leica Gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे
22: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
0: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Like a Gold. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: द वेट इज finally over.
8: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
7: Mirzapur is coming to the big screen.
9: Gaddi na to virasat se milti na siyasat se.
7: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
10: Abe Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
7: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
9: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
14: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
17: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
18: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
21: Laika Gold is doing a tribute of Asha Bhosle.

0: And a happy birthday to Bharti as well. She shares her birthday with Asha Bhosle ji. And this was Dil To Pagal Hai, picturized on Karishma Kapoor.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Sanu ik pal chana na haave, sanu ik pal chana na haave, sajna tere.
3: Aapka naya station, Laika Radio Ghazals, bahut jald aa raha hai.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3551, Indian rupees 128.45, Afghan Afghanis 88.70, Pakistani rupees 375.75, Kenyan shillings 175.38, and Mauritian rupees 63.49.
5: Laika Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LAIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
6: नीसा नासिर लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
7: गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट. बाली ब्रह्मभट इज स्पॉन्सर्ड बाय जेमिन फूड्स. तुम्हारा टी टाइम नो असली हीरो. दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, नमकीन, खाखरा, चिक्की, पोटेटो चिप, मैंगो पल, पानी पूरी, सो मेनी वेराइटीज फॉर एवरीवन. मर्शे तुम्हारा नजीक ना एशियन शॉप्स में.
8: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
9: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823.
10: वेडिंग सेलिब्रेशन, कॉर्पोरेट इवेंट, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग. रागासन.
11: Down the road. We can get it in, but it won't be for a few days.
12: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply, subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
13: Wherever you want to go, for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
14: No more worries for me or you. साफ और ट्रैवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
15: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
16: द वेट इज फाइनली ओवर।
17: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
16: मिर्जापुर इज कमिंग टू द बिग स्क्रीन।
18: गद्दी ना तो विरासत से मिलती ना सियासत से।
16: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
19: अगर कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
16: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
18: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
20: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड
1: सोना ज्वेलर्स डॉक्टर
2: लंदन दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड

0: मेरे साथ अभी ऑनलाइन happens to be the one and only person that was the closest to Asha Bhosle ji. And आप सबने उनको यहाँ shows में भी देखा, worldwide जितने भी shows हुए, और देखा जाए तो when at the funeral time of Asha Bhosle ji, the one person that was there all the time happened to be none other than Sudesh Bhosle ji. Sudesh ji, namaskar.
1: नमस्कार बाली जी, कैसे हो आप?
0: बस देखो, आज आशा भोसले जी को याद कर रहे थे तो मैंने सोचा आपको मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूं कि आप तो सबसे क्लोज थे आशा भोसले जी के साथ, सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ और कैसा रिलेशनशिप था? हाँ जी,
1: और आप, मुझे शायद सपना आया कि बाली जी अभी रेडियो पे होंगे, आशा जी का, आशा जी के 93rd बर्थ एनिवर्सरी क्या बोलते हैं ना, सेलिब्रेट कर रहे होंगे.
0: हाँ, हाँ.
1: और आपने सोचा और मैंने फोन किया.
0: मैं सच बोलता हूँ, सिक्स्थ सेंस है, बहुत अच्छा रहा आपने फोन किया. और मेरी विश,
1: दिस इज कॉल्ड टेलीपति. एक होता है मेरा पति, दूसरा टेलीपति, मन से बोलना. एनीवे, मजाक नहीं अभी तो. अच्छे मौके पे हम लोग बात कर रहे हैं, कोइंसिडेंस है
0: जी.
1: और क्या कहें, 93rd एनिवर्सरी मतलब उनके जाने के बाद उनकी पहली बर्थ एनिवर्सरी, तो जाहिर है कि जितने भी उनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, सिंगर्स हैं, नहीं है
0: जी.
1: उनको भी मतलब हर पल. और जैसे आपने भी बहुत काम किया उनके साथ, और मैं बहुत लकी हूँ कि 40 साल
0: जी
1: 1986 से 2026 तक
0: जी,
1: तो बहुत मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि उनके साथ तो मुझे काम करने का मौका मिला स्टेज पे, स्टूडियोज में. और मैं तो इतना लकी समझता हूँ कि बाली जी, आप और हम, कि द आशा भोसले जिनको लोग एक झलक देखने को तड़पते हैं, तरसते हैं.
0: हाँ.
1: वो लोग, वो बड़ी कलाकारा सरस्वती माता हमको जानती थी. वो हेलो बाली कैसे हो, सुदेश क्या कर रहा है, तेरी आवाज ऐसी क्या हो गई, क्या प्रॉब्लम है तेरे को, मतलब ऐसे एक ना एल्डरली फिगर या सीधे कहो कि एक माँ की तरह
0: yes.
1: हमसे बात करती थी. एंड वी वर सो फॉर्चुनेट कि हमने उनके साथ खड़े होके गाना गाया. मुझे आज भी यकीन नहीं हो रहा, उनके साथ ट्रेवल किया, उनके घर पे जाके कई बार खाना खाया है. तो वो सारी चीजें एक एक एक एक पल की याद आ रही हैं. और मैं तो क्या बताऊं, मुझे बेटा मानती थी. और अभी अभी ना, अभी वही गाने जब मैं डुएट्स गाता हूँ ना अपने शो में,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: इंतहा हो गई, जाने जा,
0: हाँ.
1: ये रातें, मौसम, पिया तू,
0: वाह.
1: तो मुझे याद आता है, अरे कल तक तो मैं आशा जी के साथ गाता था.
0: ओह माय गॉड,
1: कोई कोई समझ नहीं सकता कि मैंने किशोरदा के साथ शोज किए हैं,
0: हाँ.
1: कोरस दिया है,
0: हाँ.
1: लेकिन आशा जी के साथ डुएट्स मैंने ये सारे जो ना,
0: हाँ.
1: दम मारो दम में कोर, मतलब अब मैं जब कोई भी गाना गाता हूँ
0: हाँ
1: स्टेज
0: जी.
1: पे या टीवी पे तो हाँ. मुझे वो पल याद आता है कि आशा जी कैसे मेरा हाथ पकड़ के डांस करती थी, तो कैसे देखती थी मुस्कुरा के कि शम्मी कपूर का आजा आजा, तो मैं मस्ती करता था, नखरे करता था.
0: ओह माय गॉड,
1: करती थी.
0: ओह माय गॉड.
1: और आज हम सोचते हैं कि अरे ये वापस नहीं होगा, और क्या ये हमारे साथ हुआ, आशा जी के साथ क्या मैंने गाया, मैंने क्या मैंने स्टेज पे गाया उनके साथ.
0: Absolutely.
1: और सबसे बड़ी बात, ये तो सब जानते कि उनके जैसा वर्सेटाइल कलाकार कोई नहीं था, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आशा जी, नॉट ओनली आशा जी, सारे जो हमारे गुरु सिंगर्स है, लता जी,
0: हाँ,
1: मोहम्मद रफी साहब, मुकेश
0: हाँ.
1: जी, प्लस कल्याण जी, आनंद जी, एल
0: हाँ
1: पी, पंचम दा, बप्पी दा, मैं ये सोच रहा हूँ बार बार, बाली जी आप भी सोचते होंगे, ये लोग अगर ये भंडार म्यूजिक का नहीं बनाते तो हम लोग क्या करते स्टेज पे?
0: कुछ नहीं, सच में
1: मेरे गाने कितने, आपके गाने कितने, मेरे 5-6 हैं,
0: हाँ.
1: आपके भी हैं. तो और मैं तो कहता हूँ जो स्टेज सिंगर्स हैं,
0: हाँ जी,
1: और हम जैसे कलाकार, हमारा घर चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने इतना भंडार बना के चल रहा है आज भी. और वो सिर्फ ना इंस्पायर नहीं करेंगी
0: जी,
1: और आने वाले 100,000 साल तक हम जैसे म्यूजिशियंस का घर चलाएंगी वो, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए इतना प्योर अपना हिंदुस्तानी
0: जी,
1: मतलब कोई डिसेंट काम करके गए हैं,
0: जी
1: तो जिन जितना उनको आशा जी को हम थैंक्स कहें तो कम है। और जो नहीं भी गा रहे ना उनके हर वक्त के हर मूड के साथ ही रहे हैं आशा जी के गाने, तो जितना भी हम याद करेंगे
0: हाँ जी,
1: जितना उनको थैंक यू करेंगे
0: हाँ जी,
1: उतना कम है बाली जी। और हम और मैं तो ये बोलता हूँ ना, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना अरे आप गाते हो तो रफी साहब की याद आती है, आप गाते हो तो किशोर कुमार, तो मैं तो कहता हूँ नहीं, किशोर दा, लता जी, आशा जी, मुकेश जी, रफी साहब, प्लीज कम बैक, हमारे बस की बात नहीं, हम दूर दूर तक आपके पास नहीं आ सकते
0: जी,
1: ये तो हम
0: सही
1: सुन
0: बोले,
1: सुन के बड़े हुए हैं। और वो तो लोगों का नहीं जनता का एहसान है कि वो लोग हमको सुनते हैं,
0: सच
1: क्योंकि
0: बोले,
1: वो गाने ही इतने हिट हिट हैं
0: हाँ
1: कि कोई भी गाए तो लोग आह निकलती है।
0: हाँ
1: जैसे एक छोटे से 2 मिनट ले रहा हूं आपका,
0: अरे प्लीज प्लीज,
1: जैसे एक एक बड़े कलाकार ने रफी साहब का गाना गाए और तालियां पड़ी, वंस मोर हुआ, तो वो थोड़ा सा अरे क्या बात है मुझे वंस मोर मिला, बल्कि अंदर आया ग्रीन रूम में, तो प्यारे भाई ने बोला तो आपको क्या लगा ये तालियां आपके लिए थी या आपके लिए नहीं थी, रफी साहब के लिए थी।
0: ये बात,
1: तो मतलब हम लोग किसी भी गलत फहमी में न रहे
0: हाँ
1: कि जब मेरे महबूब अगर
0: हाँ
1: तालियां पड़ती हो, वो मैं जानता हूं क्योंकि मैं होश में हूं कि ये मेरे लिए नहीं रफी साहब के लिए एलपी के लिए है, तो समझ रहे ना। तो जब तक हम लोग ये इसका एहसास रखेंगे ना
0: हाँ जी,
1: कि हम लोगों, क्योंकि देखो जैसे माता पिता की कोई जगह नहीं ले सकता, भगवान की कोई जगह नहीं ले सकता,
0: जी
1: उसी तरह ये जो बड़े दिग्गज हमारे गुरु, और
0: हाँ,
1: ना ये मैं तो समझता हूँ पहले जी ये इंसान थे ही नहीं, ये अवतार थे सारे,
0: ये सब अवतार थे, सच
1: अब अपना अपना रोल करके चले गए आगे के हजारों साल तक। मैं नए बच्चों को, अगर आपके पास गुरुजी नहीं है, आप क्लासिकल नहीं सीखते, तो सिर्फ इन 5, 6, 10 जो दिग्गज है, मन्ना दा, ये
0: हाँ,
1: उनको बस सुनते रहो सुनते रहो, पहले कानसेन बनो फिर तानसेन बनो।
0: ये बात,
1: तो और मैं तो मुझे सिर्फ गाना नहीं दिया उन्होंने, तो मैं तो वही गा रहा था 80 के साल दशक में, लेकिन मुझे लोग कॉमेडियन समझते थे, मिमिक्री आर्टिस्ट, लेकिन जब आशा जी के साथ गाने लगे तो लोग बोले अरे यार ये तो सिंगर भी है क्योंकि आशा भोसले गवा रही है।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: और बड़ी बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं जब शुरू किया 80s में 60 रुपीज पर शो मुझे मिलते थे,
0: ओह माय गॉड,
1: आशा जी के शो करते ही वो कैसे 6,000, उसके कैसे 6 लाख, उसके कैसे 10 लाख, 20 लाख बने मुझे पता। अच्छा गाना मैं वही गा रहा हूँ,
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत बहुत बहुत 30 मार कहाँ बन गया या तानसेन बन गया, गाना मैं वही गा रहा हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज आई स्टूड बिसाइड्स आशा जी एंड शी अलाउड मी टू सिंग डुएट्स विद हर, लोग बोले यार ये तो सिंगर है क्योंकि आशा भोसले इसको लेके जा रही है।
0: बहुत बड़ी बात की आपने,
1: तो
0: सच,
1: कौन किस रूप में कब किसके काम आ जाए
0: जी।
1: और मैं बता रहा हूँ उन्होंने जो सर पे अपने आपके मेरे सर पे हाथ रखा
0: जी,
1: तो हम इनका कर्जा क्या कहते हैं ना, बस थैंक यू गॉड कि हमारे, एक तो मैं कहूंगा कि हमारे देश में आशा जी पैदा हुई, और सबसे बड़ी बात कि हम मिले हैं उस आशा भोसले को। आपको और मुझे कितने फोन आते हैं सुधीर जी रिहर्सल में प्लीज एक बार ले जाइए, सिर्फ उनके पैर छूने एक
0: छूटो,
1: और हम लोग ऐसे हैं कि आशा सुदेश क्या कर रहे हैं, घर पे आ रही, 4-4, 5-5 घंटे आ रही है, और एक बार तो उन्होंने आई 7 बजे 11:30 बजे तक, और मैं सोच रहा हूँ भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आशा भोसले शी इज जस्ट कमिंग एंड ये खाओ ओके चाय पियेंगे दर, मतलब
0: कैन यू बिलीव दैट, ओह माय गॉड,
1: वो जाने के बाद ना हम, मैं, हेमा पत्नी मेरी और श्रुति सिद्धांत, हम लोग ना ब्लैंक हो गए थे, हमारा क्या कहते हैं ना शरीर ठंडा पड़ गया, आशा भोसले आके गई और नॉर्मल बात करके गई,
0: ओह माय गॉड,
1: मतलब ये ऐसा ऐसा है जो हमने मांगा भी नहीं था, तो भगवान तो कितनी बड़ी बात है ना, तो
0: बहुत बड़ी बात है
1: बाली जी।
0: हाँ,
1: तब से बाली जी मैंने ना कंप्लेन करना मांगना बंद कर दिया,
0: ऐसा
1: कि हाँ कि भगवान मैं पहले, मुझे भी गुस्सा आता था ना, अरे इनसे क्यों गवा रहे, मैं भी तो अच्छा सिंगर हूँ। वो जो जवानी का जोश था ना, जब से आशा जी आई लाइफ में,
0: हाँ
1: बोले
0: जी
1: जो मेरी औकात नहीं, और आशा भोसले मुझे गाने के लिए ले जाती। तो और एक बड़ी बात कहूंगा, मैं आशा जी को हर शो में पूछता था, आशा जी आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स हैं, क्लासिकल सीखे, आप मुझे क्यों ले जाती हैं?
0: हाँ
1: मुझे आज भी समझता नहीं, सुर लगा नहीं लगा, तो सिर्फ मुस्कुराती थी। फिर
0: ओह माय गॉड
1: इसराइल में हम लोग गए थे, हम लोग एक जगह गए थे, तो मैंने बोला, उन्हें आज मुझे पता, बोले तू गाता अच्छा है, तू आदमी अच्छा है,
0: वाह वाह
1: तो बोले तू ना। और एक और वाक्य मैं कहना चाहूंगा
0: प्लीज
1: बड़े प्यार से,
0: प्लीज
1: क्योंकि कुछ कुछ महीने ना मैं नहीं था उनके साथ,
0: जी
1: कोई और प्लेबैक सिंगर थे, तो पता है कुछ वजह से हुआ ऐसा, मैं थोड़ा
0: हाँ
1: सा दूर हो गया था उनसे।
0: ओ
1: और मैंने उनको फोन किया, आशा जी मैं काम के लिए नहीं फोन कर रहा हूँ, आपके शो के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई गलतफहमी है तो प्लीज मुझे बताइए, मेरे खून में वो नहीं है, बेईमानी नहीं है। तो
0: वाह
1: और आपने ऑर्केस्ट्रा से उठा के मुझे सीधे पंचम दा के लहजे का मुझे प्लेबैक सिंगर बन गया। आप
0: जी
1: सोचना भी नहीं कि मैंने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से मैं आपसे दूर हूं, और मैं पैसे और प्रोग्राम के लिए नहीं फोन कर रहा हूं, सिर्फ जो भी हो ना, कोई कोई गलत फहमी तो प्लीज आज उसको बोल डाली मुझे। तो वो बोले कुछ नहीं सुदेश। और फिर एक महीने बाद उन्होंने क्या बोला मालूम
0: क्या
1: मुझे,
0: क्या
1: सुदेश तू नहीं है ना, अब मैं सिर्फ सोलो गा के ग्रीन रूम में जाके बैठती हूँ, मैं डुएट गाना बंद कर दिया।
0: ओ माय
1: एंड शी
0: गॉड
1: वाज क्राइंग।
0: आपने मुझे रुला दिया सच्ची
1: हाँ
0: ये बात
1: शी
0: पे
1: एक्चुअली, तो उन्होंने बोला मुझे, सुदेश तू नहीं है ना, मराठी में, मैं सिर्फ सोलो गाती हूँ और गुपचाप गपचुप जाके मेरे चुपचाप ग्रीन रूम में बैठ जाती हूँ, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता तेरे बगैर।
0: ओ माय
1: और
0: गॉड
1: फिर भगवान ने उनकी मेरी बात सुन ली, कुछ ऐसा मौका आया
0: जी
1: कि अचानक कुछ प्रॉब्लम हुई, सुदेश कल तू 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के आ जा, मैं बहुत परेशान हूँ, तू आ जा, और मैं चला गया। और उसके बाद उन्होंने सबसे कहा पूरे ग्रुप को, इसके बाद मुझे कोई अगर किसी सिंगर का नाम रिकमेंड किया तो खबरदार मैं
0: वाह
1: सुदेश के अलावा शो नहीं करूंगी।
0: वाह
1: और
0: वाह
1: सर
0: वाह
1: मैं बाली जी और बता रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनके गुजरने से 1 महीने पहले गया था, मैं से हर 2 महीने 3 महीने में जाके जस्ट आशीर्वाद लेने के। तो जैसे मैं एंटर किया ना उनके गुजरने के 1 महीने पहले, तो
0: हाँ
1: बोले सुदेश 8 तारीख लिख ले, 8 सितंबर मेरा बर्थडे है, हम लोग
0: ओ
1: जियो
0: माय गॉड
1: गार्डन बैंड्रा में शो करना, तू लिख ले। और मैंने बोला बिल्कुल हाँ। और फिर
0: ऐसा
1: जब मैं
0: है
1: निकला ना, तो
0: हाँ
1: और आखिरी वर्ड उनके, मैं निकला ना सुदेश जा रहा है, मतलब हाँ एक बात सुन,
0: हाँ
1: पूरे वर्ल्ड में तू एक है, मेरे को ऐसा भरोसा, मैं रात को 2 बजे भी फोन करूंगी ना तो मुझे मालूम है तू आएगा भाग के मेरे लिए। ये उनके
0: थैंक यू
1: आखिरी
0: फॉर शेयरिंग
1: मुलाकात थी
0: दिस
1: मेरे।
0: सुदेश जी इस
1: तो
0: बात पे
1: क्या
0: मैं
1: बताऊं
0: तालियां
1: मैं
0: बजा रहा
1: आपको,
0: हूँ
1: मैं
0: हाँ
1: अरे नहीं, मतलब मैंने अभी तक माना नहीं कि आशा जी नहीं है, मेरे को
0: थैंक यू
1: यकीन ही नहीं हो रहा है।
0: थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सुदेश
1: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एंड आपका लाइका रेडियो और बाली जी, आपका
0: जी
1: ये शो और आपकी ये फैन फॉलोइंग,
0: जी
1: आपकी आपके इस
0: जी
1: लाइका रेडियो की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़े, गॉड
0: थैंक यू
1: ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू सुदेश जी थैंक यू सो मच आई रियली अप्रिशिएट इट थैंक यू
1: थैंक यू,
0: बाय
1: थैंक यू,
0: बाय
1: बाय।
0: आई विल कॉल यू बैक थैंक यू
2: The top stories this hour. The Foreign Secretary has announced a trade ban with Israeli settlements in the occupied West Bank. Ed Miliband says settler terrorists are carrying out ethnic cleansing of Palestinians. But speaking in the Commons, he says the argument isn't with the people of Israel.
3: Our argument is with the conduct of its government. And I also want to say emphatically to people in Britain and indeed across the world, holding British Jews responsible for the actions of the Israeli government is anti-Semitism, plain and simple.
2: Israel's president's called the trade embargo a grave miscalculation. The settlements are illegal under international law, although Israel disputes that. The Duke and Duchess of Sussex say they're surprised by the King's letter, making it clear the couple will remain non-working royals. The decision's been made following requests for guidance after Harry and Meghan returned to the UK last month. It's a restating of the late Queen's position on the matter. Our royal correspondent Laura Bundock says despite this, the move is still unusual.
4: The timing's interesting in all of this, and I think Buckingham Palace and the Sussexes, there seem to have been a softening in relations there, but it feels that once again we're sort of seeing the battle lines being drawn up, particularly as we sort of count down to when we will be seeing Harry shortly.
2: A Foreign Office minister has told MPs there's no doubt over Britain's sovereignty of the Falklands. Argentina's president recently restated his country's claim to the islands. Thieves have stolen four paintings from the Renoir Museum on the French Riviera. Two were dropped, but the artworks are still worth around £8 million. The number of babies born in Scotland has fallen to another record low. The birth rate's now 7.7 per thousand people, down from 8.4 a decade ago. And Sir Tom Jones says that he's been fired as a judge on The Voice UK. The 86-year-old served as an on-off coach on the show since its 2012 debut. He claims he's been told it's down to a financial difficulty with insurance. From Sky News, I'm Imani Rana.
5: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: And looking at the temperatures, 17 Celsius maximum temperatures in London and 18 Celsius maximum temperatures in the Midlands. And this afternoon we'll see rain pushing eastwards and it will turn drier later in the day with sunshine developing. And in the Midlands, you would see this afternoon turn breezy with patches of clouds, sunny spells and a few scattered showers.
5: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
0: That was so fabulous of Sudesh Bhosleji to come and tell us about his experiences with Asha Ji. And it got me teary. It really got me teary. Let's listen to more heroines for which Asha Ji sang.
5: Like a Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: How is it sasta? Kahin nahi mil sakta.
7: Travel Hub.
6: At all protected.
5: Leica. Seven stations. One podcast. One mobile app. This is the Leica Radio Network.
0: We're doing a tribute of Asha Bhosleji and the heroines for whom she sang. This is Urmila Matondkar and then Kajol.

0: Oh, wow, wow, wow. I mean, I am in awe at the moment thinking about kya ho gaya. You know, Sudesh ji ne jo baatein ki, and I was reminiscing over what he had said, and computer itna bhar gaya. Santosh ji and Harrow and Nirmal and Kirit, and we got Hema ji and Prakash Somaya, Arjun ji, Jagdish from Bushi, and Manu and Vijay Godori and Jyoti and Girish Shah, Jasmine. I mean, it's amazing ke Pammy Singh ji, and then Sunita ji, Hansa Vora, Hannah, Rama Patel, we got Shobhana Rai, Aruna and Bhupendra Patel, Auntie ji hamari, and Bharti, and we got Bharat Gangaram, and Mahendra Patel, and Mickey, and Kiran Dev ji. Sabne jo messages mere ko bheje, dil khush ho gaya. Main to mere aankh mein aansu the jab unhone kaha ki main hamare kitne gaane hain jo bajte hain, lekin inhone inke gaane gaakar humne itna paisa kamaya, hamare ghar chal rahe hain inke gaanon se. Jaise ki Rafi saab hai, Kishor da hai, and Asha ji, Lata ji, inke saath khade rehkar gaana. और मैंने जब दो एल्बम्स किए थे आशा जी के साथ, दो सीडीज फॉर यूनिवर्सल म्यूज़िक, तो उनके साथ 90 दिन हमने रिकॉर्डिंग्स जो की, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ. यू नो, ये बातें और उनका बैठ के जोक्स करना और बातें करना, हंसना ज़ोर ज़ोर से, ये सब बातें हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन मन में ये स्टोरेज हो जाती है. इनके घर जाना और एक मरी चिकन बना के मेरे सामने बैठ के बोले खाओ खाओ, और खिला रही है और बातें कर रही है. मतलब ये बातें मैं बस लेकर ही जाऊंगा मेरे साथ ही, लेकिन मेरे जहन में जो बातें हैं इनके साथ, जो एक्सपीरियंसेस, आशा जी द ग्रेट. सो मैं वो गाने सुना रहा हूँ जो इन्होंने सब हीरोइंस के लिए जो गाए थे. हमने जो कवर किए थे वो थे तनुजा, सायरा बानू, हेलन, करिश्मा कपूर, फिर उर्मिला मटोंडकर, काजोल, एंड नेक्स्ट कम्स ऑफ कोर्स मधुबाला, एंड देन जीनत अमान. आई ट्राई टू स्क्वीज इन एज मैनी हीरोइंस एज पॉसिबल, लेकिन आई होप यू आर एंजॉइंग द शो. एंड मैं हूँ बाली ब्रह्म भट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड LaikaGold.com. एंड इट्स द 427th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स ऑन दिस 251st डे ऑफ 2026 विद 114 डेज रिमेनिंग. एंड मेरे बाद आएंगे सैंडी शाह and on Drive Time, and Raj Baddanji on Laika Radio Midlands. Sunte rahiyega, enjoy karte rahiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127.9 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brahm Bhatt. Bali Brahm Bhatt is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
8: अपना बनाया तेनु,
7: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का. वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danube Properties London office today on 02 03.

एंड वी कम टू प्यार का सागर। संगीत है रवि का और प्रेम धवन की लिरिक्स, लेकिन हीरोइन मीना कुमारी। आशा भोसले जी सिंगिंग फॉर मीना कुमारी।

0: आशा भोसले सिंगिंग फॉर रेखा. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर परवीन बाबी.
1: अक्रॉस लंदन, दिस इज बाली ब्रांबाट ऑन लाइक ए गोल्ड.
0: Like a Gold pays tribute to Asha Bhosle ji on her 93rd birth anniversary. Heroines for whom Asha Bhosle ji sang this one for Parveen Babi.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel, Atoll Protected.
4: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
5: Add Desi Tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
4: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
6: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
7: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
7: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
7: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
8: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
9: द साइकिल ऑफ लव. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
10: I left behind everything I knew.
9: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
10: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
9: The Cycle of Love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
11: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
12: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: अवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक मन्ना दा। मन्ना डे जी ने आशा भोसले जी के साथ ये गाना गाया श्री 420 में, और हीरोइन राज कपूर तो हीरो थे ही, लेकिन हीरोइन नादिरा। सो देयर यू आर, वी आर कवरिंग हीरोइंस एज वेल ऑन आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
0: Yes, Rawasan, Laika Radio Network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Rawasan. Details at laikaradio.com. And Punjabi legend, mega balle balle, Punjabi legend Lakhwinder Wadali. Friday, 16th of October at Crystal Grand, Slough. And Sunday, 18th of October at ICC, Birmingham.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Proudly sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. Bringing authentic flavors to your table every day. Find Gemin at Asian stores near you.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: बोले तूने क्या कर रहा?
6: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
5: ये तो बताओ, कोई पता चला?
6: गुरु गुरु,
7: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
5: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
8: शीघ्र
5: शीघ्र.
7: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
9: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
2: एक्सक्लूसिव Radio partner, Laika Radio Network.
10: The wait is finally over.
11: Ah, ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai, Yadav ji.

Cool Drive with Sandy Shah. Oh yeah. ये है Like a Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208782833 और विजिट travelhubworld.com

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
3: ये तो बताओ कोई पता चला?
4: गुरु गुरु
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
4: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
5: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
3: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
7: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
0: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.

0: This is Sandy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 getting you 128.34 Indian rupees, 88.54 Afghan Afghani, 375.83 Pakistani rupees, 166.38 Bangladeshi Taka and 445.11 Sri Lankan rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: The gold is trading at £104.37 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: अनीसा नासर,
3: हाँ जी,
1: बड़ा बड़े अफसोस के घर, अफसोस के साथ कल मैं घर गया था।
3: क्यों?
1: क्योंकि आपने मेरी शायरी का फलूदा निकाल दिया था।
3: नहीं नहीं नहीं,
1: लेकिन आज मैं एक और ट्राई करने वाला।
3: नहीं, जरूर ट्राई करने, एक और ट्राई। मैंने फलूदा नहीं निकाला था, मैंने सिर्फ थोड़ी सी बैलेंस की बात की थी, और वो भी आपका कसूर नहीं था, बिकॉज वो जैसे आपने सुना आपने वैसे उसको शेयर कर लिया।
1: चलो एक और ट्राई करते हैं।
3: जरूर जरूर, क्यों नहीं। लेकिन मिठाई लेके आयो आज, वो इसलिए कि मेरी शागिर्दी में आना है।
1: वो मिठाई पता नहीं कहाँ से आ गई।
3: वो कहाँ से नहीं आई, वो हमारे
1: वो किसी लिसनर के जन्मदिन का, जन्मदिन उनका है, मुंह मीठा मारा
3: कर रहे हैं, मोटा हमें कर रहे हैं।
1: सो ये है कि खुलकर ना एक साथ जिए हम ना मर सके।
3: ओ, खुलकर ना एक साथ जिए हम ना मर सके।
1: हाँ, एक दूसरे के वास्ते कुछ भी ना कर सके हम।
3: तू
1: पता नहीं की बिके नहीं।
3: चलो ठीक है, आप गाने की
1: तू शायरी की दुनिया तैरी जा, मैं सिर्फ पैर गिला करना।
3: ठीक है,
1: ठीक है, पैर मेरा गिला हो गया, जराब पाके मैं घर चलिया।
3: ठीक
1: है, थैंक यू जी, मेहरबानी जी। ये या वो, पहला गाना है जीवन चलने का नाम फ्रॉम शोर,
3: ब्यूटीफुल सॉन्ग।
1: दूसरा गाना है कस्मे वादे प्यार वफा उपकार से
3: ऊपर, सुपर सुपर से भी ऊपर वाला प्यारा गाना।
1: कौन सा चाहिए आपको?
3: कस्मे वादे, ऑब्वियसली।
1: So for me, I do, I've always really liked, I just love the way Jeevan Chalne Ka Naam is done. Lekin, when you listen to the lyrics of Kasme Vaade Pyar Wafa, and I think they are so true, I can't work the other way. It has to be everything. It has to be Kasme Vaade Pyar Wafa. So that's where my vote is going as well. So thank you very much indeed for everybody who voted. It's time for me to say goodbye. I'm handing over to the wonderful Anisa Nasser, who will be here on the show next. And don't forget Gold Nights. There are some fabulous songs on there tonight as well. Every night we handpick them, and there's some rare songs on there as well, but there's some very popular ones. So if you want to hear, as I say, and it's going to sound a bit rude, Dickin, it's music without the buck buck, if you see what I mean. कोई बात नहीं करा। शायरानी बक बक।
3: इसको कहते हैं स्ट्रॉंग हेडेड।
1: शायरानी बक बक में बहुत फर्क होता है, मैं तो सिर्फ बक बक करता हूँ।
3: ओह नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।
1: आपकी गोल्ड प्लेटेड है। There you go. But if you enjoyed even one song today, please, please, please do join me tomorrow on Drive again between the hours of 4 and 7. Have a lovely evening. Enjoy Anisa Nasser's wonderful music and enjoy Gold Night. The next song won. Thank you to all of you who voted. Have a lovely night. Bye-bye for now.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करती हूँ। और ये तो दोस्तों की महफिल है जी, किद्दां कीवें किंज ये मुझसे पूछा जा रहा है। बेहद शुक्रिया उदय हुई उनजी, और आपके पास आकर तो मेरा वक्त भी गुजर जाता, मेरा दिल भी बहल जाता है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो, यानी आपका वक्त भी अच्छे से गुजरे और आपका दिल भी बहला रहे। तो बहलाऊँगी इधर उधर की बातें करके, रोज़मर्रा वाले फीचर्स चलाकर, और सबसे बढ़कर आपको प्यारे प्यारे गीत सुनवाकर। गीतों में आज भी कुछ कॉमन है। You are boozing, some are boozing, some are not boozing at all.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, your £1 in British sterling can get you up to 127.9 Indian rupees today. Don't forget to exchange in branch, online, ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: वजाहत जी, बेहद शुक्रिया एज ऑलवेज शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज के साथ। मनु जी, अंजुम जी, अंजुम जी अब सर पकड़ के बैठी हैं, शायद रियलाइज कर लिया कि गलत जवाब भिजवा दिया, अब पछताई क्या हो, वह जब चिड़िया चुग गई खेत। मनु जी, अंजुम जी, निमी जी, निमी जी तुसी खुले च खलोते हो, अज की गल है, तुसी दो चार दिन तो बड़ी गलत जवाब भेज रहे हो, तुसी सही हो जाओ। मैं कहनी हाँ निमी जी आपका भी जवाब गलत, और मोहम्मद अयूब चौहान जी आपका कौन सा सही है?
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
3: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
4: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
2: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Hey gorgeous, join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
10: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
9: Get your free tickets, book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. brought to you by Recommendation and Avari Events.
10: Exclusive media partners LIKA Radio, sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
11: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
5: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
14: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन
15: लाइका गोल्ड लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे
16: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और जितना सोचा था कि आज मिठाई नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना. Thanks to one of our listeners who was celebrating his or her birthday, because I'm not sure. तो मैं बता नहीं सकती कि male हैं या female हैं, लेकिन जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं. लीजिए भैया, वो बार बार कह रहे हैं किद्दा किवें किंज, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि ओ रो रो पुच्छण हाल मेरा, ओ रो रो पुच्छण हाल मेरा, मैं खिड़ खिड़ हसा. की दसा.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड Feel Good Classics with Anisa Nasir.
2: जी हाँ, और भी अब आपको बता दें कि थीम को लेकर बहुत सारे लोग कोशिशों में लगे हैं और बहुत सारे लोगों के जवाब भी सही हैं. चौधरी फरीद अहमद साहब, देखा जल्दी क्लास में आने का क्या फ़ायदा होता है, मतलब ये मेरा स्कूल नहीं है, लेकिन वो जो जोक मैंने कल सुनाया था उसी के रेफरेंस से कह रही हूँ कि जल्दी आएंगे, जल्दी पता चलेगा थीम क्या है और फिर आप राजा भी बन जाएंगे, जो कि आप बन गए हैं आज. चौधरी फरीद अहमद जी, सबसे पहले आपने सही जवाब भिजवाया, फिर बीजे सिंह जी ने, विजया लक्ष्मी, शगुफ्ता जी, ताहिर जी, मंजीत संगर जी, दीनी जी, वी मिस्ड यू यस्टरडे दीनी जी, उल्लास जी, अजिंक्या जी, वीना जी, फरजाना जी, तोची जी, गुरसरनजीत जी, रजनीश जी, शकीला नेड़ा जी, ये यस वेल डन, प्रीति जी बेल्जियम से, और अमिता जी अपने घर से, बेहद शुक्रिया, बिल्कुल सही जवाब है. अब ये जो है फवाद जी, भारती जी यानी कि हमारी दीदी अडवाणी जी, आपका जवाब मैं सही नहीं मान सकती. इंदिरा मल्होत्रा जी, आपका भी नहीं. उमर जी दुबई से, नोटी, वेरी नोटी. मैं जब थीम का पता चल जाएगा फिर मैं बताऊंगी आपने क्या मैसेज भेजा. सो वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, बट जवाब आधा अधूरा इसलिए नहीं मान सकती. और एक मैसेज ने तो मेरा दिल जो है ना वो यूं करके क्या कहूँ अपने बस में कर लिया है, और ये है रमा जी. रमा जी कहती हैं हॉर्न चर्च से आपने जो है मैसेज भिजवाया है, और कहती हैं कि वेलकम बैक, मेरे बेटे ने बताया कि आप वापस आ गई हैं, हालांकि वो हिंदी नहीं बोलता या समझता. क्या बात है, बहुत सारा प्यार आपके बेटे को.
3: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: मेरे सलाम को अब आखिरी सलाम समझ, मेरे सलाम को अब आखिरी सलाम समझ, कि तेरे शहर में बारे दगर नहीं आना। हमारा अगला सफ़र धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छाँव में अब लौट कर नहीं आना। निम्मी जी आ गई लड़ाई करने के लिए, होए होए बहुओं में टुंगियाँ हुई, यानी नीचे करें स्लीव्स नीचे करें, कहती हैं कैसे गलत है। अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा नज़र आपकी उस मैसेज पर पड़ी है जहां आपने मेरे मेरी लिखा है, क्योंकि मेरे मेरी जैसा कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ उसके ऊपर जो आपने लिखा है वो ठीक है, लेकिन ये तो गलत था ना, चलें आप ठीक कर लें।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Anisa Nasir with The Big Show.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: वी आर फाइनली गोइंग home for the wedding.
5: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and

0: अलीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
1: पंकज त्रिपाठी एस का अलीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
2: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खोलेगा।
3: Search is changing.
4: Customers aren't just using Google anymore.
3: They're asking AI.
4: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
3: One business, one recommendation.
4: So when someone asks AI, who's the best company for this?
3: Will your business be the answer?
4: Or the one that got left behind?
3: The future of search has already started.
4: Have you? Visit HeartyHanks.com and make sure AI recommends you.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
5: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
6: अपना बनाया तेनु,
5: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार।
1: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
2: Feel good classics all day. Like a gold.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
2: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
3: Southall Travel at all protected.
4: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
5: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
6: One performer,
7: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover, live UK tour 2026.
6: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi. के लिए फिर मचेगा बवाल।
11: अरे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
8: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है।
14: दिवाली स्टोरी विद द बिग शो, वीक नाइट्स फ्रॉम 7 PM।

ये प्यारी आवाज, ये प्यारा अंदाज कोई कभी भूल सकता है क्या? वन एंड ओनली मसूद राणा जी, 1977 की फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म आईना से लिया था हमने ये गीत। दिलीप सरोज जी, किरित जी और सोबत खान जी, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। और अब हम एक और गीत सुनवाते हुए और ये बताते हुए कि गीतों में आज महबूब और महबूबा कॉमन रहा। वेल डन एवरीवन।

0: गर्मी हसरते नाकाम से जल जाते हैं और हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शम्मा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुम नाम से जल जाते हैं। खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाबे वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और दोस्तों आपको बता दें, आज का एक्सचेंज रेट SBI के तहत से अगर आप £1 in British sterling इसको एक्सचेंज करें तो यू कैन गेट अप टू 127.9 इंडियन रुपीस टुडे। सो डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या फिर SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और शगुफ्ता जी, आप भी पल पल मेरे दिल के पास रहती हैं। So very sweet of you. बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस और भी हैं। बॉबी जी, a very good evening Anisa जी, wonderful show as always. बेहद शुक्रिया and you are lovely and kind and generous as always. Thank you. और अमिता जी, आपको इस आवर का आगाज बहुत अच्छा लगा, दोनों गीत आपके नाम। और लीजिए अब ये चंद अल्फाज आप सभी के नाम, ताकि आप बूझ सकें कि ये कौन सा गीत है। जी हाँ, उल्टे पुल्टे की बात करते हैं। खुशी तूने पाई, मैं बहुत आसान कर रही हूँ आज आपके लिए। खुशी तूने पाई, प्यार की शहनाई जीवन में ना। खुशी तूने पाई, प्यार की शहनाई जीवन में नो ना ना ना ना ना ना।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
3: Speak for yourself. I can never let go.
2: Bladder leaks. I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
3: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
2: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
3: Let's just say I found my flow.
2: Always discreet. Live with no compromise.
1: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place. 11,
6: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
7: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
10: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
11: Laika Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and LaikaGold.com.
12: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: इस दर्जा ना वीरा हूँ कोई मौसम गुल भी, कहते हैं किसी शाख पे एक फूल खिला था, एक तू के गुरेजा ही रहा मुझसे बाहर तौर, हर हाल में मुझसे परे ही रहा, दूर दूर ही रहा, एक तू के गुरेजा ही रहा मुझसे बाहर तौर, एक मैं कि तेरे नक्श कदम चूम रहा था। किसी ने क्या खूब कहा है कि निभाता कौन है कौलो कसम, तुम जानते थे ये कुर्बत आरजी है, कम से कम तुम जानते थे। रहा है कौन किसके साथ अंजामे सफर तक, ये आगाज़े मुसाफत से ही हम तुम जानते थे। और बॉबी जी, मैं जानती हूँ ये आपका प्यार है सर आंखों पर, दिल से कदर करती हूँ मैं आपके अल्फाज की, आपके जज्बात की। सो वेरी स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। लीजिए उल्टे पुल्टे को एक दफ़ा फिर से दोहरा देते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आज आपको परेशान करूंगी, ये गीत शायद आप सोच ही ना पाएं कि ये मैं उल्टे पुल्टे के लिए चूज़ कर सकती हूँ, लेकिन आपने तो मुझे हैरान कर दिया, हरियान कर दिए। खुशी तूने पाई, प्यार की शहनाई जीवन में ना, और हाँ जी हाँ, रानी जी स्लाव से, यू आर द रानी ऑफ द आवर। नाम की भी रानी और काम की भी रानी, आपने सबसे पहले सही जवाब दिया। कविता कुमार जी जर्मनी से, और मुझे लगता है कल आप थी रानी शायद, चलिए कोई बात नहीं, आज भी आप रानी ही हैं। किरित जी, जैजी जी, जैजी जी आज हमें सुन रही हैं जालंधर में, कहती मैंने रेडियो ऑन किया तो मैंने सोचा ये आधी रात को निशा जी क्या कर रही हैं, मैं तो गोल्ड नाइट का म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो ऑन करके बैठी थी, फिर मुझे ख्याल आया अरे धत तेरे की मैं तो जालंधर में हूँ, यूके में अभी यही टाइम है अनीसा के आने का। क्या बात है जस जी, वहां जाकर भी याद रखा हमें, जालंधर को भी हमारा सलाम कहिएगा। उल्लास जी, फरजाना जी, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। रीटा जी, चांद मेरा दिल, नो
0: ये है लाइका गोल्ड। Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और आपको बता दें, Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिएगा Southall Travel को आज ही on 0208574 8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Anisa Nasir on Leica Gold Greater London.

0: लाइका गोल्ड।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
3: और आपको बता दें कि इस एपिसोड में आप देखेंगे मोहम्मद वकील स्पेशल, बहुत जाने माने सिंगर और होस्ट किया है इस एपिसोड को रवि शर्मा जी ने फॉर एस्पायरिंग सिंगर्स। वकील जी की बातें सुनिएगा, वो उसके साथ साथ शेयर करेंगे एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर देम और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। हार्ट फेल्ट कन्वर्सेशन है फिल्ड विद म्यूज़िक मेमोरीज करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ वैल्यूएबल लेसन्स। तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, अनीसा नासिर लाइव अक्रॉस ग्रेटर लंदन विद द बिग शो।
4: hubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट travelhubworld.com।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
0: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
1: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
0: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
1: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sona Tours on 0208 951 0111.
6: LIKA Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On this week's LIKA Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
7: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से कोई रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है
6: LIKA Extra is here. Search for our podcast, LIKA Extra, on all major streaming platforms. Feel good classics.

0: हर किसी को जरूरत रहती है प्यार की, मोहब्बत की, यार की, दिलदार की, दुख सुख बांटने वाले की, और हम में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मोहब्बत सबको चाहिए होती है। मोहब्बत कहते हैं कि दुख नहीं देती, मैं नहीं अंजुम जी कह रही, मोहब्बत दुख नहीं देती अगर बेगर्ज हो जज्बा, अगर मंजिल बने रास्ता, अगर चाहत के पर्दे में कोई लालच ना हो लिपटा। अगर तुम सौंप दो सब कुछ, अगर तुम सौंप दो सब कुछ, सिले में कुछ नहीं मांगो, अगर सौदा ना हो कोई, मोहब्बत बस मोहब्बत हो, तो मोहब्बत दुख नहीं देती।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: लो जी अभी मोहब्बत की बात हो रही है, पैसे की बात हो। One British pound आज आपको दिला सकता है 128.4 Indian rupees, 88.6 Afghan afghani, 375.9 Pakistani rupees, 166.4 Bangladeshi taka and 1.3 US dollar.
1: Laika Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LAIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: The gold is currently trading at £104.37 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: और भाई टाइम तो है ये पंजाबी तड़के का, लेकिन उससे पहले हम जरा ये मैसेज शामिल कर लें।

0: शुक्रिया। आप हैं मुनीब, और मुनीब जी बहुत अच्छा लगा आपसे आज इस तरह से आपने हमसे रابطہ किया, और आपका रابطہ करना हमें बहुत अच्छा लगा। अंसर जी आप भी सुन रहे हैं, और आप जानते हैं फरमाइशी डे है, लिहाजा सुनते रहिए। और निमी जी डेफिनेटली एक गीत तो आपके पसंद का शामिल रहेगा, सो रहेगा ही।
1: माइका रेडियो नेटवर्क पंजाबी तड़का विद अनीसा।

0: क्या बात है, क्या आवाज़ है, क्या अंदाज है, वन एंड ओनली आबिदा परवीन जी। आज उनकी आवाज़ में पंजाबी तड़का हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। हमारे घरों में तो कोई शादी ऐसी नहीं हुई आज तक, और ना ही मेरा ख्याल आइंदा भी चांस है कि जिसमें ढोलक की थाप पर ये गीत गाया ना जाता हो। अपना ही मज़ा, अपना ही स्वाद है इस गीत का। क्यों जी, आप एग्री करते हैं मेरे साथ? चलो जी, मेरा दिल रखने वाले से एग्री कर लो। संध्या भावसर जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। और आपने कहा कि आज जैंस का कोई रिलीजियस जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है फॉर 9 डेज, तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। राइट, आते हैं, बढ़ते हैं आज के उल्टे पुल्टे की जानेब। बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने चुना है, एक बार मुस्कुरा दो। फिल्म का नाम है 1972 की फिल्म, और गीत सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। हालांकि गीत तो मुस्कुराते हुए गा रहे हैं किशोरदा, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि तू मेरे बस से निकलता हुआ वो लम्हा है, तू मेरे बस से निकलता हुआ वो लम्हा है, जो मेरे बस में कभी हो भी नहीं सकता था। मैंने कुछ दिन की तवज्जो पे कनात कर ली, यानी सबर शुक्र कर लिया, मिट्टी पा देती। मैंने कुछ दिन की तवज्जो पे कनात कर ली, मेरे हक में तू सखी हो भी नहीं सकता था।
1: This is Anisa Nasir with the Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
3: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 020-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
6: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
7: You know how fans shout at football matches?
8: Oh, wake up!
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk. Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.

0: क्या गीत है, क्या ही गीत है। कहते हैं दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है अपने पसंदीदा शख्स को उसके पसंदीदा शख्स के साथ देखना। रख लिया दिल की जगह हमने उठाकर पत्थर, अब कोई बिछड़े तो दुश्वारी नहीं होती। एक सुकून है जो बहुत दूर पड़ा रहता है, एक वहशत है जो अब तारी नहीं होती। और तारिक साहब कह रहे हैं कि मोहब्बत दुख नहीं देती, लेकिन बकौल शायर, अगर दर्दे मोहब्बत से ना इंसान आशना होता, ना कुछ मरने का गम होता, ना जीने का मजा होता। बात तो बड़ी पते की और बात बड़ी गहरी है। अंसर महमूद जी, आपकी पसंद का गीत सुनते और सुनवाते हुए हम खबरों की जानिब बढ़ेंगे। फरमाइशें बहुत ज्यादा और अनीसा के पास एज ऑलवेज वक्त की कमी, तो सुनते हैं मुजीब आलम जी की आवाज में ये बहुत ही प्यारा सा गीत। गुड इवनिंग।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: मन्ना डे जी और लता जी की आवाज़ों में आपने सुना ये बहुत ही प्यारा सा गीत। उम्मीद करती हूँ कि आपके पसंद के मैार पर खरा उतरा होगा। और अब मेरा बस नहीं चल रहा कि सबकी सब फरमाइशें जो हैं सुना डालूं, लेकिन कैसे, लेट्स सी किसकी फरमाइश पूरी होती है और किसकी नहीं। फवाद जी दिल अपना और प्रीत पर आइए आपने सुनना चाहा, कुछ ही देर में हाजिर करती हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान TCO उनको लेकर आ रहे हैं, प्रेजेंट करेंगे उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान जी को। एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है ये, प्रोग्राम ट्रिब्यूट है टू वन एंड ओनली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनकी 30th डेथ एनिवर्सरी के मौके पर। वन डेट ओनली, याद कर लीजिए, दिल की डायरी में नोट कर लीजिए, बहुत ही एक्स्ट्रा शो होने वाला है ये संडे 18th, एक्सेप्शनल कहना चाहिए, संडे 18th अप्रैल 2027 एट O2 लंदन। रेडियो पार्टनर्स लाइक अ रेडियो।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: फवाद जी आपकी पसंद बहुत सारे लोगों की पसंद बन गई। मनु माधवानी जी का कहना है कि फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं है, आपके भी नाम करते हैं इसको, बेहद शुक्रिया।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Geeta aur Harshit Joshi ji, aapko bhi bahut acha laga to aapke bhi naam karte hain. और फवाद जी, रसीद भिजवाने के लिए बेहद शुक्रिया। कभी जज्बों कभी ख्वाबों की तिजारत करके दिल ने दुख दर्द कमाया है मोहब्बत करके। एक जरा भूल हुई और उन्हें खो बैठे, हमने पाया था जिन्हें बरसों इबादत करके। लीजिए दोस्तों एक और पैगाम।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: बिग बॉस के फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ जानते हैं कि सीजन 20 बिग बॉस का शुरू हो चुका है और दोस्तों इसे होस्ट कर रहे हैं हमेशा की तरह सलमान खान। शो जो है वो एयर होता है एवरीडे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार पर। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार जो है स्ट्रीम कर रहा है एवरी एपिसोड, और उसके साथ साथ लाइव 24/7 फीड भी जारी है बिग बॉस 20 के घर से। तो जियो हॉटस्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी। फिर क्या ख्याल है, देख रहे हैं आप? मैं तो देख रही हूँ, मैं देखे बगैर रह नहीं सकती, मैं क्या करूँ। कई दफ़ा ऐसी भी सिचुएशन हो जाती कि दिल करता कि आंखें बंद कर लूँ, लेकिन आंखें बंद करके भी कान में खुले रखती हूँ क्योंकि मुझे जानना होता है कि अगर ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई।
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 AM Saturdays and Sundays, like a gold in London, the Midlands and Manchester.
1: This is Anisa Nasir with The Big Show.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com।
6: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
7: Daddy!
6: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorized and regulated by the Financial Conduct Authority.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधू, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र। क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
11: टू बुक Call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
13: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
14: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
13: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
14: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
13: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
15: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers...
16: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.
17: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जख्म भर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। जख्म भर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। दिन गुजर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। आपके जोर का जब जिक्र छिड़ा महशर में, हम मुकर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। रो के जीने में भला कौन सी शीरीनी है, हंस के मर जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। सईदा जी ठाकर के लगा ना दिल पे आप ही के नाम। और लीजिए अब आखिरी दो गीत जो हैं, दो गजलें जो हैं, एक तो सुननी चाहिए लीला जी ने और एक पुरुषोत्तम जी ने। और क्या खूबसूरत पसंद आज आशा भोसले जी की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए। मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी ताकि आप बग़ैर किसी इंटरप्शन के आराम से इन दोनों गज़लों का लुत्फ़ उठाएं। आपके लिए लाइका लेकर आ रहा है गज़ल स्टेशन ख़ास तौर पर, और उसके साथ साथ मेरे जाने के बाद गोल्ड नाइट का चुना हुआ म्यूज़िक जो है उसे सुनना हरगिज़ हरगिज़ मत भूलिएगा। बशर्ते ज़िंदगी में कल हाज़िर होती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूँगी। सुनते रहिए, सुनवाते रहिए लाइका रेडियो नेटवर्क की नशियात को। 24 घंटे सातो दिन आपकी सेवा आपकी खिदमत में आगे आगे। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सोने दे हवाले।
1: Anisa Nasir with the big show weeknights from 7 PM. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20 every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
3: Oh, terrible weather.
2: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
4: See ya, good luck with the interview.
3: Thank you, bye.
2: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, Atoll Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 7736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर Travel Mantra.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Lipo Radio Network.
11: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Like a Gold.
12: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Yeah Yavo. Only Like a Gold.

0: bringing to you the best classics all night. This is Leica Gold.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Thomas.
2: Daddy!
1: He needs to get home for bedtime stories because he does the absolute best voices. You help Thomas show he cares and we'll help you take care of business. Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 02085748410
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
10: बिग बॉस में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान
5: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM
11: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.

0: This is Leica Gold.
1: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
2: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
2: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
7: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
9: I left behind everything I knew.
8: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
9: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
8: The cycle of love. In cinemas nationwide from September the 18th, book now at thecycleoflovefilm.com.
10: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
11: Four beers, please, garçon!
10: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
12: We're finally going home for the wedding.
13: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
14: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
13: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
14: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
13: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
14: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
15: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
16: Asian Achievers Awards. Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
17: Taza kare apni yaadein. Leica Gold ke saath.

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
4: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत.

0: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।
1: अरे अरे अरे अरे अरे तेरा सवा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तन्हा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी। बेवफा, बेरहम, बेमुरव्वत, तेरी ये हिम्मत।